क्या तोप है स्वामी, मानस की गाते ही सुख होटल गुरु सेव ही है, एहनस सहज सुभाए, दर्शन परस्या गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, सतनाम वाहिगुरु जी सोरठ।

अपने भगत करें प्रतपाला, अचरज तेरी वड़ियाई, नित नानक नाम त्याई, सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला।

सवारे रहाओ। ए संसार बेकार संसय में तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे रस अकात कथा तैन जानी। जा को आए सोई बेहा जो हर घोर तै मने, निज कर मैल पावोस बौर न होए गो। अंतर जामी पुरख बदाते सरदा मन की।

कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे, नानक कहे सुनहो जनहो, इत संजम दुख जाए पौड़ी शक्ति संतुख।

0: सजाए महला पहला।
1: अंदरों झूठे पैद बाहर दुनिया अंदर फैल, अठ सठ तीर्थ जे नहावै उतरे नाहीं मैल। जिन पट अंदर बाहर कुदरती भले

लगे चाकरी चले एक समय पाए हुरमत सुनोगली हो जो दुना खाए एक समय करे बराबर फिर गया तंद्र पाए वजह हो गए गुलाम हम बाणा खा जिस दाता खावना तस्के सबास नानक न चले नाल किसम चले अरदास नाल किसम चले अरदास।

शरण जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गृहे साकत शती प्रकार ते भिखु समान भगत जना का लूंगरा ओढ़ नगन ना होई साकत सिरपाओ रेशमी

रहे हैं। आद विचों टूटे हार जानकी सेवा जो करे, एत उतें छूटे साब केश तुम ही ते हुआ, आप बणत बनाई दर्शन भेटत साधु का।

गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा। जित मिले चूके सब सोग संतापे,

0: चित मिले चूके सब सूग संतापे। जुगो जुग अटल चबर शतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु बाणी की बोहित अमृत के दाते दसा पातशाहियां दी जोत साहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तो सजे दवाना दियां हाजरियां भर रहे सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब।
1: बापू जी हौली बोलिया कर थोड़ा इन्हों माड़ा जिहा रोकियो।
0: जो आप सब सतगुरु की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठ के सतगुरु की अमृतमयी बाणी दे कीर्तन मेरे तो पहला गुरु करके रागी सिंघां पासों सतगुरु सच्चे पातशाह की पावन बाणी आसा की वार दे कीर्तन सरवण कर रहे सी। उपरंत सत्कारयोग भाई साहब जी ने गुरु चरणा विच सरबत दे भले की अरदास करके अज का जो पावन मुखवाक है वो आप संगत दे नाल सांझा कीता है। तो आओ अज दे इस पावन मुखवाक की विचार नूं आरंभण तो पहला फतेह की सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग बिलावल विच पंजवें पातशाह सतगुरु

जीड़ाय बराबर तपै पीतर वगै काती प्राणवात नानक हुकम पछाणै सुख होवै।

ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती तूट सनाही अनहद किंगुरी बाजी। सुन मन मगन भये हैं पूरे माया डोल न लागी।

इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही तुम हे मेरे परिवार है जो तुम करो सोई भलो अमरै पेख नानक सुख चरनारै बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तौ सगल उधारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन हे बेसारन रहाओ संच बिख्या ले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बिदारना

रही दिन से और रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभु की नए नाम अपने की कीनी दात, आठ पहर गुण गावत प्रभु के, काम क्रोध इस तन ते जात

सत संतोख दया धर्म सच संतन ते इमंत लई। कहो नानक जिन मनहु पछानिया तिन को सगली सोज पई। लावल

रहाओ। जो देख छिद्र तो निंदको माहे, भलो देख दुख भरिया, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरिया, निंदक प्रभु पुलाया, काल नेर आया, हार जन स्यों बाद उठरिया।

तुम समर्था कारण कारण ढाकन ढाक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराधी सरण चरण रहाओ जो जो किन्यो सो तुम जाने हो पेखे हो ठौर नाही कछ ठीठ मकरन बड़ परता।

का जानकी धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावर महला पंजवा ज्यों पावै त्यों मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सत गौर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ।

सब देख अभिमाना बिन नावे किछ संग न जाना रहाउ की चहरस भोग खुशियां मन केरी तन लोका तन भस्म ढेरी खाकू खाकर सब फैल

हृदय नाम सदा कृतार्थ साची दरगह पूछ ना होए। माने हुक्म चीजै दर सोए, सतगुर मिलै ता तिस को जाने, रहे रह जाई हुक्म पछाणै हुक्म।

कमावे, दर घर महल ठौर कैसे पावे। हर जियो सेविय अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी ओ जोत समानी।

हर हरि औस्तुत करै दिन राति, रख रख चरण हर ताल पूरैया। हर कै रंग रता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया।

साधु चरण पखियार हाउ तजय गृहस्थ भया बनवासी एक खिन मनुआ टिके न टिकैया धावत ताए तदय घर आवै हर हर साधु शरण पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसास करे नहीं बुझै गुर कै शब्द निरास सुख लैया पुजीतरा तर्क दिगंबर हुआ मन दह दिस चल चल गवन करैया प्रभवन करै बुझै नहीं तृष्णा मिल संग साथ

चेटक चटकैया तृप्त संतोख मन सांत न आवै मिल साधु तृप्त हर हर नाम सिद्ध पैया अंड जिर सित जुत पज सवर्ण रूप जी जंतो पैया साधु सन पर सो पर खत्री ब्राह्मण।

ताकि मित ना जाने कोई जल थल महियल सोए बंधन कर बंधना लख बार थक परयो प्रभ दरबार प्रभ करो साधु तूर नानक मनसा पूर बिलावन महला पंजवा।

मन साचा मुख साचो पाए सच निशान ठग न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध सद सच नह केवल कर्म अरादै पौन पानी अग्नि बसराओ तही निरंजन सचो नाओ तिस मह मनुआ रहे लिवलाए परणवत नानक काल न खाए नाओ नवमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबलवंडा आई पूता एहो जग सारा।

ज्ञान सच मैल न लागै ब्रह्म भौ पागै बिम बिल मन्ना तूट सकच तागै ज्यों तागा जग वै जान हो अस्तर चीत सच रंग मन हो एकादशी एक हृदय बसावै।

रस हर त्रापै राम, मानस जन्मो हर पाई हर, रावण बेरा राम, गुरमुख मिलो सोहागणी रंग होए कनेरा राम। जिन मानस जन्म न पाया तिन भाग मंदेरा राम, हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम, गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग भीना राम। भगत बछल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम, बिन हर नाम न जीव दे जो जल बिन मीना राम। सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम, बिलावल मोहल्ला चौथा श्लोक। हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै बड़ भाग, गुर पूरे वे खलिया नानक हर बिलाग। संत मेरा हर प्रभ रावण आईया होमे बिख जागे राम, गुरमत आप मिटाया हर हर लिब लागे राम। अंतर कमल प्रगासया गुर ज्ञानी जागे राम, जन नानक हर प्रभ पाया पूरे बड़ भागे राम। हर प्रभ हर मन पाया हर नाम बुधाई राम, गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिब लाई राम। अगे आनंद हीरा कटिया जो तू प्रगटिया ही राम, जन नानक नाम उधार है हर नाम सुमाई राम। धन हर प्रभ प्यारे रावियां जा हर प्रभ पाई राम, अखी प्रेम कसाइयां जो विलक मसाई राम। गुर पूरे हर मिलिया हर रस गाई राम, जा नानक नाम विकसिया हर हर लिबलाई राम। हमूर्ख मुगद मिलाया हर कृपा अंतारी राम, धन धन गुरु सवा सजन होमे मारी राम। जिन बड़भागियां बड़भाग हर हर उर धारी राम, जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम। बिलावल मोहल्ला पंजवा शांति को अंकार सतगुर प्रसाद, मंगल साज पया प्रभ आपना गाया राम। बिनासी बर सुनिया मन उपजै चाया राम, मन प्रीत लागे वड्डा भागे कब मिलिया। पूर्ण पते सहज सोमाइया गोविंद पाइया देव सखिया मोहे मते। दिन रैन ठांडी करो सेवा प्रभ कब न जुगति पाया, बिनवंत नान करो कृपा ले हो मोहे लड़ लाया। भया सुमाहड़ा हर रतन बसाहा राम, खोजी खोज लदा हर संतन पाहा राम। मिले संत प्यार दया धारे कथ अकथ बिचारो एक चित मन, ते आए स्वामी लाए प्रीतु प्यारु कर जोड़। प्रभयंकर बिनंती मिले हर जस लाहा, बिनवंत नानक दास तेरा। मेरा प्रभ अगम अथाह साहि अटल गणिया, पूर्ण संजोगो राम सुख समूह पया गया बिजोगो राम। मिल संत आए प्रभ त्याय बने अचरज आईया, मिल एकत्र होए सहजुन ढोए मन प्रीति उपजी माविया। मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम, सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत। मिली प्रभ करण कारण जोगो भावो नू, सुहावड़ा धरत सो भागी राम। प्रभ करिया अड़ा गुर चरणी लागी राम, गुर चरण लागी सहज जागी सगले इच्छा पुनिया। मेरी आस पूरी शंतूरी हर मिले कंत बिछुनिया, नंद अनदन वजे वाजे अहं मत मन की त्यागी। बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग, लिब लागी बिलावल महला पंजबा भाग। सुलखना हर कंत हमारा राम, अनाद बचित्रा तिस धुन दरबारा राम। आनंद आनंदन वजै वाजे दिन सरहण महा, तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन मरण ना। ताहार सिद्ध सुधा रस अमृत भगत भरे भंडारा, बिनवंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अदारा। सुन सखिया सुहेलड़ियो मिल मंगल गावो राम, मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावहु राम। कारु प्रेम रावहु तिसे पावहु एक निमक पलक न त्यागी है। गाय कंठ लाइया नहल जाइया चरण राज मानू, भागी है भगत ठगौरी पाए मोह अनंत कतहु।

भाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चिराग। जन नानक जीव देख हर एक निम

दुख सहन। पहिए कृत कमाव दे जिस राखत बिरहन, जिन्नी सतगुर सेविया तान ताने ते सास गिरास, सदा मन वसै जम जो है सकै तिस। हिरदय हर हर नामो रस कमला सेवको तिस, हर दासा का दास होए परम पदार तिस, नानको मन तन जिस प्रभ सेहु सतगुरु बाण तिस, जिन को पूर्व लिखिया रस संत जन स्यों तिस पौड़ी, जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया सो ही वर्त्या, जगत मह कट कट मुख पणिया, बहुत बड़ियाईया सहब न जाई, गणिया सच सहज आनंद सतगुरु पा सची गुरमणिया, नानक संत सवारी पार ब्रह्म सच्चे स्यों ज्यों बनया, श्लोक महला तीजा अपना आपना पछाणी, हर प्रभ जाता दूर गुर की सेवा विसरी, क्यों मन रहे हजूर मन मुख जन्म गवाया, झूठे लालच कूर नानक बख्श मलायन, सच्चे शब्द हजूर महला तीजा, हर प्रभ सच्चा सोला गुरमुख नाम गोबिंद, आनंद नाम सलाहना हर जपया मन आनंद, बड़भागी हर पाया पूर्ण परमानंद, जन नानक नाम सलाहया बोड़ना मन तन भंग पौड़ी, कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुरु आवे, पिछले गुण है सतगुर बख्शले, सत संगत नाल रलावे, ज्योमी उठे गलियां नालियां टोबिया का जल जाए, पवे बिच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन हो जावे, ए वड़ियाई सतगुर निरवैर बिच जित मिलिया, तिसना भुख उतरे हर सांत तड़ लवै आवै, नानकी अचरज देखो मेरे हर सच्चे साका जी, सतगुरु नो मन्नै सो सबना पावै शुद्ध, बिलावलो बाणी भगता की कबीर जियो की ओंकार सतगुर प्रसाद, ऐसे

सर्वव्यापी। तुम शमशरणाहि दयाल मोहे शमशर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागरे अन लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूझै। हर हर रस लपट्यो हमारे कुल कौन राम कहो। जबकि माला लई न पुते तब ते सुख न पयो रहाओ। सुनो जठानी सुनो हो देरानी अजरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये कोई एहो मुंडिया क्यों न मोयो।

की हर नाक शो नाक विद्रयो कार के देव पितर की चोडी गुर को शब्द लयो। कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लाय उदर हो बिलाभ लिंकु हर सुमान नहीं राजा ये भूपत सब दिव सुचार के झूठे करत निधि वाजा राहो। तेरो जन होए सो एक तुंडोले तीन भवन पर शाजा आत पसार सके को जन को बोले सके नहीं अंदाजा चेत चेत मूड मन मेरे बाजा अनहद बाजा कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव प्रहलाद ने बाजा बिलावलो।

जग जीवन राम रहाओ। आवत कछु ना दिसी नह दिसे जात जय उपजे बिन सहत ही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर्माया तजी सुख सहज विचार कह कबीरन सेवा करो मन मंज मोरार बिलावल। जन्म मरण का ब्रह्म गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन सो मान्या गुर साखी जागी रहा उनका सीते तुन उपजे तुन का सी जाई का सी फूटी पंडता तुन कहा सुमाई। त्रिकुटी साधु मैं पिकया घट हु घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट मैं त्यागी आप ते जानिया तेज ते सुमाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बिलावला।

अनेक फल पाई हर जाने सब कुछ जो जी वरते प्रभु का लिया तिसका एक तलना गवाई हर तिसकी आसिंह की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जैसा ने फल आसा बिरथी जाई राहू।

बाहे अकछ न बसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीत में अपने की जो तुझ तारें तेरा कोटंब सब छुड़ाई। जे किश आस अवर करें प्रो मृति मत तू जाने तेरे किते कम न आई। हे आस पर मित्री पौ दूजाए किन मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साची की जो तेरा घाले आ सब था।

0: एको बोले हर एक बोलाए गुरपुरै हर एक देखिया हर अंदर नाले
1: हर
0: बाहर।
1: अंतर नाले बाहर नाले कौत इस पासो मन क्या जो रही है निकट सेवा कीजे अर्थ ता मेरे मन सर्व सुख पईए जिस दे वस सब कुछ सो सब तू वड्डा सो मेरे मन सदा ध्याई है जा नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा ध्याई तू तुत लै छडईए गुण महला चौथा हर दर्शन को मेरे मन बहुत तृप्त है जो त्रखवंत बिन नीर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर हमरी बेदन हर प्रभ जाने मेरे मन अंतर की पीर रहाओ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर मलमल सखी गुण को तेरे प्रभ ले केले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पजावो हर दर्शन शांत शरीर शक्का एक राग गौंड महला पांचवा चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाओ संतो करता पेकत करता आदृष्टो करता दृष्टो करता ओपत करता परलो करता व्यापत करता अलिपतो करता भक्तो करता बूजत करता आवत करता जात भी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुरप्रसाद नानक श्रम दिष्टा गुरु नानक नाम दृष्टा गौंड महला पांचवा फाक्यो मीन कब की न्याई तू उर्ज रहो कौन संभाल ले पग धारे सास ले लेखे ले तू ले तुद उदरे हर गुण गाय ले मन समझ छोड़ आए वेले अपने रहन को ठौर न पावे काए पर कह जाए ले रहा ज्यो मैंगल इंद्री रस प्रेरियो तू लाग परयो कुटुंबाय ले ज्यो पंखी एकत्र होए फिरे बिछरे थिर संगत हर हर त्याय ले जैसे मीन रसन साद बिन सो होए मूठो मूड लुभाय ले तू होआ पंच वास वैरी के छूटे पर सरनायर ले हो कृपाल दीन दुख भंजन सब तुमरे जी जनताय ले पावन दान सदा दर्श पेखा मेरे नानक दास दसाय ले राग गौंड महला पांचवा चौप दे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण की एजन साज माटी मैं जोत रखी नेवाज बर्तन को सब किच भोजन पोगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सूजे निरंजन देव रहाओ जिन की ये रंग अनक प्रकार ओ पुत परलो निमक मझार जा की गत मित कई न जाए सोपरा मन मेरे साथ आए आवे न जावे ने चल तनी बेअंत गुणा का बेअंत गुणा ताके केतक गनी लाल नाम जाके परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जाके है नाओ मिटे कोड अग निमक जस गाओ बाल सकाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गुड महला पांचवा नाम संग कीनो व्यवहार नामो ही इस मन का आधार नामो ही चित कीनी ओट नाम जपत मिटे पाप कोट रास दी हर एको नाम मन का इष्ट गुर संग ध्यान राव नाम हमारे जी की रास नामो संगी जत कत जात नामे ही मन लागा मीठ जल थल सब मैं नामो डीठ नामे दरगा मुख उजले नामे सगले कुल उदरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग ए मनुआ गीत नामे ही हम निर्भौ पै नामे आवन नाम जावन रहे गुरपुरे मेले गुणतास गौ नानक सुख सहज निवास गौंड महला पांचवा निमाणे को जो दो तो मान सगल भूखे को करता दान। गर्भ कोर मैं राखन हार तिस ठाकर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभ मन माए त्याए काट अवकट जत कते सलाहे रहाओ। रंग कराओ जाके एक समान कीट हस्त सगल पुराण। बियो पूछ ना मसलत तरे जो कच करे सो आपे करे। जा का अंत न जान सकोए आपे आप निरंजन सोए। आप अकार आप निरंकार घट घट घट सब घट आधार। नाम रंग भगत पै लाल जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अगाए नानक तिन जन लागे पाए। गोड़ महला पांचवा जाके संग ए मन निर्मलो जाके संग हर हर सिमरण। जाके संग जाके संग कैलवक होए नास जाके संग हृदय प्रगास। से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम गाइए जाके नीत रहा। जाके मंत्र हर हर मन वसे जाके उपदेश परम पौ नसे। जाके कीरत निर्मल सार जाकी रेन बांछे संसार। कोट पतत जाके संग उधार एक निरंकार जाके नाम आधार। सर्ब जिया का जाने पेयो कृपा दान रंजन देयो। पार ब्रह्म जय पै कृपाल दब भेटे गुर साध रवाल। दिन रैन नानक नाम त्याए सुख सहज आनंद हर नाए। गौड़ महला पांचवा गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर के शब्द मंत्र मन मान। गुर के चरण हृदय ले तारो गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को परम भुले संसार गुरबिन कोय न उतरस पार राव। भूले को गुरु मार्ग पाया अवर त्याग हर भक्ति लाया। जन्म मरण की त्रास मटाई गुर पूरे की बेअंत वड़ाई। गुर प्रसाद ऊर्द कमल बिगास अंधकार में भया प्रगास। जिनकी आसो गुर ते जानिया गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुर करता गुर करने जोग गुर परमेश्वर है पी होग। कहो नानक प्रभ एह जनाई बिन गुर मुक्त बिन मुर मुक्त ना पाईए पाई। गौड़ महला पांचवा गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं ना ही होर। गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोय ना मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान जो तिस भावे सो पाए मान। गुर ऊपर सदा कुर्बान गुर का दर्शन देख निहाल। गुर के सेवक की पूर्ण काल गुर के सेवक को दुख ना व्यापे। गुर का सेवक दे दिस जापे गुर की महिमा कथन ना जाए। पार ब्रह्म गुर रहा समाए। कहो नानक जाके पूरे भाग गुर चरणी ता का मन लाग। गौड़ महला पांचवा गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरा दियो अलख अपेयो सर्व पूज चरण गुर सेओ। गुरबिन अवर नाही मैं थाओ आनदन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुर गोपाल पुरख भगवान। गुर की सरन रहो कर जोर गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोएथ तारे पव पार गुर सेवा जम ते छुटकार। अंधकार में गुर मंत्र उजारा गुर के संग सगल निस्तारा। गुर पूरा पाइये वडभागी गुर की सेवा दुख न लागी। गुर का शब्द न मेटे कोए गुर नानक नानक हर सोए। गौड़ महला पांचवा राम राम संग करे बिहार राम राम राम प्राण आधार। राम राम राम कीर्तन गाए रमत राम सब रहो समाए। संत जना मैल बोलो राम सब ते निर्मल पूरन काम रहाओ। राम राम तन संच भंडार राम राम राम कर आर राम राम विसर नहीं जाए कर कृपा गुर दिया बताए। राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लिवलाए। राम राम जप निर्मल पै जन्म जन्म के किल विक वगै रमत राम जन्म मरण निवारे उचत उचरत राम पै पार उतारे। सब ते ऊच राम प्रगास निसबासर जप नानक दास। गौंड महला पांचवा उनको खसम की नीठा कहारे दास संग ते राम मार बिदारे। गोविंद भगत का मैल न पाया राम जना मैल मंगल गाया। सगल श्रेष्ठ के पांच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ। जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करे सलाम। लूट ले साकत पत खोवे साध जना पग मल मल धोवे। पंच पूत जने एक माए उत भज खेल कर जगत वे आए। तीन गुणा कै संग रच रसे इनको छोड़ उपर जन बसे। कर कृपा जन लिए छाए जिसके सितन रखे हटाए। कौ नानक भगत गुरसार बिन भगती सब होए खुआर। गौंड महला पांचवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की न ठाव। जब जब अमृत नाम अगाए संत प्रसाद सगल फल पाए। राम जपत जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे राव। गुर के चरण रिदे उरतारे अगन सागर ते उतरे पारे। जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सह समाद। थान थनांतर एको स्वामी सगल कटाका अंतर जामी। कर कृपा जा को मत देहे आठ पैर प्रभु का नाउं ले। जाके अंतर वसे प्रभ आप ताके हृदय होए प्रगास। भगत पाए हर कीर्तन करिए जप पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौंड महला पांचवां।

ਝੱਕ ਮਾਰੋ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਭਇਆ ਵਿਸਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕੀ ਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦ ਜੀਤ, ਗੁੜ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਨੀਰ ਨਰਾਇਣ, ਰਸਨਾ ਸਿਮਰਤ ਪਾਪ ਬੁਲਾਇਣ। ਰਹਾਉ ਨਾਰਾਇਣ ਸਭ ਮਾਏ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਰਾਇਣ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਤੇ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵ ਸਗਲ ਫਲ ਪਾਏ। ਨਾਰਾਇਣ ਮਨ ਮੈਂ ਆਧਾਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਤ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਤ ਜਮ ਭਾਗ ਪਲਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੰਤ ਭਾਨੇ ਡਾਇਣ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਦ ਸਦ ਬਕਸੈਂਦ, ਨਾਰਾਇਣ ਕੀਨੇ ਸੂਖ ਆਨੰਦ। ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਤ ਕੋ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਰਾਇਣ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਗਾਇਣ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰ ਮਿਲ ਲਈ, ਨਾਰਾਇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਗਈ, ਗੌਂਡ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਕੋ ਰਾਖੇ ਰਾਖਣਹਾਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਰਹਾਉ ਮਾਤ ਗਰਮ ਮੈਂ ਅਗਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਾ ਪੋ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਾਗੈ ਸ਼ਾਰ। ਰਾਮ ਕਵਚ ਦਾਸ ਕਾ ਸੁਨਾਹੋ, ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਤਿਸ ਪੋਤ ਨਾਇ। ਜੋ ਜੋ ਗਰਬ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਏ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਏ। ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਸੋ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਲਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਅੰਕਾਰ, ਉਹ ਖਿਨਮੈ ਰੁਲਤਾ ਖਾਕੂ ਨਾਲ। ਹੈਪੀ ਸਾਚਾ ਹੋ ਵਣਹਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਹਾਰ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰੱਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਗੁਣ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪ। ਰਾਉ ਨਾ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਲਾ, ਨਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਨਾ ਇਹ ਬਿਨਸੇ ਨਾ ਇਹ ਜਾਏ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਨਾ ਇਸ ਉਸਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੀਤ, ਨਾ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਇਸ ਮੀਤ। ਨਾ ਇਸ ਹਰਕਨ ਨਾਹੀਂ ਇਸ ਸੋਗ, ਸਭ ਕਿਛ ਇਸ ਕਾ ਇਹ ਕਰਨੇ ਯੋਗ। ਨਾ ਇਸ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਅਪਰੰਪਰ ਹੋਤਾ ਆਇਆ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਇਸ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਦ ਹੀ ਜਾਗੇ। ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਉਪਾਇਆ, ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਦਿਆਲ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਗਤਮਤ ਕਛੂ ਨਾ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ। ਗੌਂਡ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਓ, ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਲਬਕ ਸਭ ਗਏ, ਸੰਤ ਸਰਣ ਵਡਭਾਗੀ ਪਏ। ਰਾਮ ਜਪਤ ਕਿਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ। ਰਾਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਕਰੇ ਰਵਾਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਜਾਇਆ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਵਸੇ ਮਨ ਆਇ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਾਂ ਕਾ ਪਰਵਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਲਾਗੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰੌਸਾ ਚ ਵਪਾਰ। ਦਾਸ ਜਨਾ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਜਨ ਧੂਰ। ਰਾਗ ਗੌਂਡ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤਾ, ਆਠ ਪੈਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ। ਰਹਾਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵ ਪਤੀ ਆਏ, ਦੁਸ਼ਟ ਅੰਕਾਰੀ ਮਾਰ ਪਚਾਏ।
निंदक के मुख कीनो रोग, जय जयकार करे सब लोग। संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरदेव भगवंत। संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए। सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर वे परवाहे। सगल पै मिटे जा की सरण, निंदक मार पाए सब तरण। जन की निंदा करे ना कोए, जो करे सो दुखिया होए। आठ पैर जन एक त्याए, जमुआ ताके निकट न जाए। जन नरवैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक विकारी। गुर कै सिख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे। जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए। नेतरिया सतगुर धर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलहारी, जा कै सिमरन पैज सुवारी। राग गौड बाणी भगता की, कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मष्ट कर रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए रहाओ। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले झक मारी। बोलत बोलत बड़े बकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा। कौ कबीर शूशा घट बोले, भरिया होए सो कबू ना डोले। गौड नरू मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काज सुवारे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानू बाबा रे राव। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तुला, केस जले जैसे घास का पूला। कह कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। गौंड आकाश अगन पताल गगन है, चौदस गगन रहाई ले। आनंद मूल सदा परखोतम, घट बिन से गगन न जाए ले। मोह बराग पयो, ए जियो आए कहां गयो राव। पांच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे। करम बद तुम जियो कहत हो, करमे क्यों न जियो दीन रे। हर में तन है, तन में हर है, सर्ब निरंतर सोई रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होई रे। राग गौंड बाणी कबीर जीयो की, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पूजा बांध भिला कर डारियो, हस्ती क्रोप मूंड में मारियो। हस्त भाग कै चीसा मारे, या मूर्त कै हो बलहारे। आहे मेरे ठाकर तुमरा जोर, काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट, इसे तुरावो कालो साट। हस्त ना तोरे तरे त्यान, वां कह रिदे वसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना। कुंचर पोट ले ले नमस्कारे, बूजी नहीं काजी अंधियारे। तीन बार पतिया भर लीना, मन कठोर अजू ना पते ना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद में जन की जिंद। गौड ना ए मानस ना ए देओ, ना ए जति कहावे सेओ। ना ए जोगी ना अवतूता, ना इस माए न काहू पूता। एया मंदिर में कौन बसाई, ताका अंत न को उपाई रहा। ना ए गिरी ना उदासी, ना ए राज ना भीख मंगासी। ना इस पिंड ना रख तू राती, ना ए ब्राह्मण ना ए खाती।
ना ए तपा कहावे सेख, ना ए जीवे न मरता देख। इस मरते को जे को रोवे, जो रोवे सो पत खोवे। गुरप्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। को कबीर ए राम की अंस, जस कागद पर मिटे न मंस गौंड। टूटे तागे नखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावन कान। कूज बचारे फूए फाल, या मुंडिया सिर चढ़ बोकाल। ए मुंडिया सगलो दरब खोई, आवत जात नाक सर होई राव। तुरी नार की छोटी बाता, राम नाम वाका मन राता। लड़की लड़कन खैबो ना है, मुंडिया एनेस तापे ना है। एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट। मूंड पलोस कमर बद पोती, हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूढ़ की टेक। सुन अंदली लोई बेपीर, इन मुंडियन ताज सरन कबीर गौंड। खासम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा और होवे। रखवारे का हुए विनाश, आगे नरक इहां भोग बिलास। एक सुहागण जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी रहाओ। सुहागण गल सोहे हार, संत को बिक बिकसे संसार। कर संगार बहे पखियारी, संत की ठिटकी फिरे बिचारी। संत भाग ओ पाछे परे, गुर प्रसादी मारो डरे। साकत की ओ पंड परायण, हमको दृष्ट परे त्रिकडायण। हम तिसका बहु जान्या पेओ, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव। को कबीर अब बहारे परी, संसारे कै अंचल लरी। गौंड ग्रह सोबा जा के रे नाए, आवत पहिया खूंदे जाए। वाके अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागण लागे दोख। धन सुहागण महापवीत, तपे तपीसर डोले चीत रहाउ। सुहागण कृपन की पूती, सेवक तज जगत स्यों सूती। साधु कै ठांडी दरबार, सरन तेरे मोको निस्तार। सुहागण है अत सुंदरी, पग नेवर छनक छन हरी। जो लग प्राण तो लग संगे, नाए ता चली बेग उठ नंगे। सुहागण भवन त्रैलिया, दस अठ पुराण तीर्थ रस किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है शेदे। सुहागण और वार ना पार, पांच नारद के संग विदरार। पांच नारद के मिट वे फूटे, को कबीर गुर कृपा छूटे गौंड। जैसे मंदिर में बल हरना ठारे, नाम बिना कैसे पार उतरे। कुंभ बिना जल ना टिकावे, साधु बिन कैसे अवगत जावे। जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रहे मैं के तेरा। जैसे हल हर बिना जिमी नहीं बोइए, सूत बिना कैसे मणिए मणि परोइए। कुंडी बन क्या गंठ चढ़ाइए, साधु बन तैसे अवगत जाइए। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागण तज ओहेरी। कहे कबीर एक एक कर करना, गुरमुख होए पौर नहीं मरना गौंड।
कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे। कुट कुट मन को सवट्टी लाए, सो कूटन मुक्त बहु पावे। कूटन किसे करो संसार, सगल बोलन के माए बचार आओ। नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ ना पतीजे परचे साचे। इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सोए जो बजारे सोदे, पांच पलीते को प्रबोदे। नौ नायक की भगत पछाने, सो बजारी हम गुर माने। तस्कर सोए जे तात ना करे, इंद्री के जतन नाम उच्चरे। को कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरदेव अत रूप बचकन गौंड। धन गोपाल धन गुरदेव, धन आनंद भूख कवल टहकेव। धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारिंग पानी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम अन्न कै साध रहा। जपिए नाम जपिए अन्न, अंबे के संग निका वन। अन्ने बार जो नर होवे, तीन भवन में अपनी खोवे। छोड़े अन्न करे पखंड, ना सुभगन ना ओरंड। जब जग में बकते दूधा धारी, गोपती पावे वटका सारी। अन्ने बिना ना होए सुकाल, तजिए अन्न ना मिले गोपाल। कह कबीर हम ऐसे जान्या, धन अनाद ठाकुर मन मान्या। राग गौंड बाणी नाम देव जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असुमेध जगने तुला पुरख दाने, प्राग इसनाने। तो ना पूजे हर कीर्त नामा, अपने रामे भजले मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता, मुख बेद चतर पड़ता। सगल धर्म अशिता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता। खट कर्म सहत सहसा, शिव साक्त संवादं। मन छोड़ छोड़ सगल भेदं, सिमर सिमर गोविंदं। भजनामा तरसत भाव सिंदिंग गौंड। नाद भर में जैसे मृगाए, प्राण तजे वाको ध्यान न जाए। ऐसे रामा ऐसे हेरो, राम छोड़ चित अंत न फेरो रहा। ज्यो मीना हेरे पशुआरा, सोना गढ़ते हिरे सुनारा। ज्यो बिखई हेरे पर नारी, कौडा डारत हिरे जुआरी। जय जय देखो तह तै रामा, हर के चरण त्यावे नामा गौंड। मोको तार ले रामा तार ले, मैं अजान जन तरबो ना जानो। बाप बीठ लाबा दे राओ, नरते सुर हुए जात निमक मैं। गुर सिख बुद्ध सिख लाई, नरते उपज सुरग को जीत्यो, सो अब तत मैं पाई। जहां जहां तू नारद टेके, नेक टकावो मोह। तेरे नाम अवलंब बहुत जन, उदरे नामे की निजमत ए गौंड। मोए लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली। पानिया बिन मीन तलफे, ऐसे राम नामा बिन बपरो नामा राव। जैसे गाय का बाशा छूटला, थन चोंगता माखन कूटला। नाम देव नारायण पाया, गुर भेट द अलख लखाया। जैसे बिखे हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी। जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम बिना बिन बापरो नामा। राग गौंड बाणी नाम देव जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर करत मिटे सब भरमा, हर को नाम ले उत्तम धर्मा। हर हर करत जात कुल हरी, सो हर अंधले की लकरी।
हर हे नमस्ते हर हे नमे हर हर करत नहीं दुख जमे रहाओ हर हर नाकश हरे पुराण अजय मलकियो बैकुंठे थान सुआ पढ़ावत गिन का तरी सो हर नैनो की पुत्री गौतम सती सिलह निसतरी केसी कंस मथन जनकिया जी दान काली को दिया प्रणवे नामा ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी गौंड भैरो भूत शीतला धावे खर बहान ओ शार उड़ावे हो तो एक रमैया ले हो आन दे बदला वन दे ओ राव शिव शिव करते जो नर त्यावे बर्द चढ़े डोर उटमकावे महामाई की पूजा करे नरसे नार होए अवतरे तू कई थी आद पवानी मुक्ति की बरिया कहां पछानी गुरमत राम नाम गौमीता परवण नामा ए कै गीता गौंड बलावल बलावल गौंड आज नामे बीठल देखिया मूर्ख को समझावो रे पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आवत देखिया था मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा रामचंद सोपी आवत देखिया था रावण सेती सरबर होई घर की जोए गवाई थी हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहा ते ज्ञानी स्याणा हिंदू पूजे दोहरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेविया जय दोहरा नाम सीत राग गौंड बाणी रविदास जी की घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए ओहार सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राणी जप मुकंद मस्तक निशानी से मुकंद करे बैरागी सोए मुकंद दुर्बल तन तालागी एक मुकंद करे उपकार हमरा कहा करे संसार मेटी जात हुए दरबार हुई मुकंद जोर जुगजार उपजो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपा लीने कीटदास कहो रविदास अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवा ताऊ की गौंड जे ओ अड़सड़ तीर्थ नावे जे ओ द्वाद सिला पुजावे जे ओ कूप तटा देवावे करे निंद सब बिरथा जावे साध का निंदक कैसे तरे सर पर जानो नरक ही परे राव जे ओ ग्रहण करे कुल खेत अर्पे नार सिंगार समेत सगली सिमरत सरवणी सुने करे निंद कवने नहीं गुणे जे ओ अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे अपना बिगार बराना सांडे करे नेंद बो जो नी हांडे निंदा कहां कहो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक जोड़ साध बिचारिया कौर विदास पापी नरक सुधारिया राम कली महला पहला घर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अयोनी सैभ हंगुर प्रसाद
कोई पढ़ता सहस करता, कोई पढ़ते पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली ही लागे तिसे ध्याना। अब ही कभी किछु न जाना, तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ। कबू जीड़ा ऊब चढ़त है, कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर न रहत है, चारे कुंटा पाले। मरन लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई, एक चले हम देखो स्वामी, पाए बलंती आई। ना किसी का मीत, ना किसी का भाई, ना किसी का बाप ना माई, प्रणवत नानक जे तू देवे, अंते होए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही, जय जय देखा तै नर हरी, जीवन तलब नवार स्वामी, अंध कूप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी राव। जय पीतर कट पीतर बसिया, बार काहे नाई, तन की सार करे नित साहेब, अंधेरा जाई। तन की सार करे नित साहेब, सता चिंत मन माही, आपे नेड़े आपे दूर, आपे सर्ब रहा भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जय देखा तै रहा समाए। अंतर सहसा बार माया, नैनी लाग सबाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, प्रताप दा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कवन दर कहिए, दरा भीतर दर कवन लए, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए रहे, किन बिद सागर तरिए, जीव त्यान है मरिए रा। दुख दरवाजा रो रकवाला, आसा अंदेसा दोए पड़ जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधिया, सत के आसन पुरख रहे, किंते नामा अंत ना जानिया, तुम सर ना ही अवर हरे, ऊंचा नी कहना मन में रहना, आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही क्यों कर एक हरे, आसा पीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिए, जीवत्या मरिए रहाओ दूजा। राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरे सिंगी, बाजे लोक सुने, पत झोली मंगण कहताई, भिख्या नाम पड़े, बाबा गोरख जागे, गोरख ते जिन गोए उटाली, करते बार न लागे राव, पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख देइए, मरण जीवन को धरती देनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साधको और जोगी जंगम, पीर पुस्त बहुते रे, जे तिन मिला न कीरत आखां, ता मन सेव करे, कागद लून रहे किरत संगे, पानी कमल रहे, ऐसे भगत मिले जन नानक, तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला, सुन मोशिंद्रा नानक बोले, वसगत पंच करे नै डोले, ऐसी जुगत जोगत को, ऐसी जुगत जोग को पाले, आप तरे सगले कुल तारे, सो अवतूत ऐसी मत पावे, ऐनस सुन समाध समावे राव, भिख्या पाए भगत पै चले, होवे सो त्रिपत संतोख अमुले, ध्यान रूप होए आसन पावे, सच नाम ताड़ी चित लावे, नानक बोले अमृत बाणी, सुन मोशिंद्रा आओ दू निशानी, आसा माए निरास वलाए, नहचो नानक करते पाए, पणवत नानक अगम सुनाए, गुर चेले की संद मिलाए,
दीख्या दारू भोजन खाए शह दर्शन की सोजी पाए। रामकली महला पहला। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत पाई। सनमुख सद भेटन को आए नहचो दियो वड्याई। गुर तार तारण हारिया दे भगत पूरन अविनाशी हो तुझको बलहारिया राव। सिद्ध साधक जोगी और जंगम एक सिद्ध जिन त्याया। परसत पैर सिज्जत ते स्वामी अखर जिन को आया। जप तप संजम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला। सुरती सुरत रलाइए एत तन कर तुलहा लंगे जेत। अंतर पाए तिसे तू रख एनस दीवा बले अथक। ऐसा दीवा नीर तराए जो दीवे सब सो जी पाए रहाओ। हच्छी मिट्टी सोई होए ता का किया माने सोए। करनी ते आ क्या कर चुके टाल। करनी ते कर चको टाल ऐते ओते निभी नाल। आपे हे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझे कोए। तित कट दीवा नैचल होए पानी मरे ना बुझाया जाए। ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ न वड्डा होए आपे ज्यों संघासन लोए। खत्री ब्राह्मण सूद के वैस निरत ना पाइया गणी सहंस। ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो परम गत होए। राम कली महला पहला। तुदनो निमन मनन तेरा नाओ साच भेट बैसन को थाओ। सत संतोख होवे अरदास तां तू सुन सद बहाले पास। नानक बिरथा कोय ना होए ऐसी दरगा साचा सोए रहाओ। प्राप्त पोता करम पसाओ तू देवे मंगत जन चाओ। भांडे पाओ पवे तित आए तुरते छोडी कीमत हर राय। तुरते छोडी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे धरे। गुरमुख प्रगट होवा हर राय ना को आवे ना को जाए। लोक तकार कहे मंगत जन मांगत मान ना पाया। सेकियां गल्लां दरकियां बातां तैं तां कहण का आया। राम करी महला पहला। सागर मैं बूंद बूंद मैं सागर कवन बुझे बिद जाने। उत बुझ चलत आप कर चीने आपे तत पछाणे। ऐसा ज्ञान बचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मैं रैन रैन मैं दिनियर उसन सीत बिद सोई। ताकि गत मैं अवर ना जाने गुरबिन समझ ना होई। पुरख मैं नार नार मैं पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धुन मैं ध्यान ध्यान मैं जानिया गुरमुख अकत कहानी। मन मैं जोत जोत मैं मनुआ पंच मिले गुर पाई। नानक तिनकै सद बलहारी जिन एक शब्द लिव लाई। राम कली महला पहला। जा हर प्रभ कृपा धारी ता होमे विचों मारी। सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी। सो हर जन हर प्रभ भावे एनक्स भगत करे दिन राती। लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ। तुन वाजे अनहद घोरा मन मान्या हर रस मोरा। गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया। सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारिंग पानी। तै तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे। जय आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा। गुर सतगुर भरम चकाया को नानक शब्द मलाया। राम कली महला पहला।
ਸ਼ਾਦਨ ਭੋਜਨ ਮਾਂਗਤ ਭਾਗੈ ਖੁੰਦਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਜਲੇ ਦੁਖ ਆਗੈ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਲੀਨੀ ਦੁਰਮਤ ਪਤ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਭਗਤ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਸਹਿਜ ਘਰ ਵਾਸੇ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਏਕੋ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ ਰਹਾਓ ਪੰਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆ ਦੇ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ਕਲਾ ਨਿਵਹਿ ਪਤ ਸਾਰੀ ਤਰ ਤੂਟੀ ਗਾਂਡੋ ਸਿਰ ਭਾਰ ਲੱਕਰੀ ਬਿਰਖ ਲੱਕਰੀ ਬਿਖਰ ਜਰੀ ਮੰਜ ਭਾਰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜੋਗੀ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰਨਾ ਭੋਗ ਬਿਯੋਗੀ ਭੁਗਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਅਸਥਿਰ ਕੰਧ ਜਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਗੋਟਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੂਟਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਲੂਟਾ ਮਨ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰਾ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜਨ ਤਰਨਾ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ ਘਰ ਘਰ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ ਸਤਿਯੁਗ ਧਰਮ ਪੈਰ ਹੈ ਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਜੇ ਨਾਮ ਲਾਗੇ ਸੋ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਿਨ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਇੱਕ ਕਲਕੀਨੀ ਦੂਰ ਪਖੰਡ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਜਾਣੇ ਦੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸੋਈ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸੇ ਸੁਖ ਹੋਈ ਦੁਆਪਰ ਦੂਜੇ ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਦੋਏ ਦੁਆਪਰ ਧਰਮ ਦੋਏ ਪੈਰ ਰਖਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਕਲਯੁਗ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਰਹਾਏ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੱਲੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਤ ਗੁਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਸਭ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਚੀ ਕੀਰਤ ਸੱਚ ਸੁਖ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵਡਭਾਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸੁਮਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੋ ਸਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਏ ਲੈ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਰਹਾਉ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਜਵੇਰ ਮਾਣਕ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਆ ਜਿਸ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵਡਮਸਤਕ ਤਿਨ ਗੁਰਮਤ ਕੱਢ ਕੱਢ ਲੀਆ ਰਤਨ ਜਵੇਰ ਲਾਲ ਹਰ ਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ ਭਗਤ ਹੀਣ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਲੀਆ ਤ੍ਰੈਣ ਓਲੇ ਲਾਗ ਛਪਾਇਆ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਰ ਪਾਏ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਪਾਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ ਹਰ ਨੀਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਦੁਰਮਤ ਮਹਿਲ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਲ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਜਨ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਬੁਲਾਏ ਜੋ ਜੋ ਸੁਣੇ ਸੋਈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਸੋਹਾਏ ਰਾਓ ਜੇ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਹਰ ਨਾਮ ਜਨਾ ਪੇਟਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦੇਹ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਦਲਦ ਦੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਨੀਕੇ ਭਾਗਹੀਣ ਨਾ ਸੁਖਾਏ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਕਹੇ ਜਨ ਉੱਚੇ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੰਸ ਲਗਾਏ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਭਾਏ ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈ ਨਾ ਪਾਏ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਓ ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਪਰਾ ਮੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਏ
राम कली महला चौथा। हर के सखा साध जन नीके तेन ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध सेई प्रभाए कर कृपा आप मलावे। राम मोको हर जन मेल मन भावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाओ। हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरी ठाकर खुशी करावे। सेवक जन सेवे सेवट भागी, रिद मन तन प्रीत लगावे, प्रीत प्रीति करे बहु बाता, कूड़ बोल कूड़ो फल पावे। मोको धार कृपा जग जीवन दाते, हर संत पगी ले पावे। हों काटो काट बाढ़ सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवे। राम कली महला चौथा। जे वड भाग होवे वड मेरे, जन मिलदियां ढिल न लाइए, हर जन अमृत कुंट सर नीके, वड भागी तित नवाइए। राम मोको हर जन कारे लाइए, हों पानी पक्खा पीसो संत आगे, पग मिल मिल धूर मुख लाइए राओ। हर जन वड्डे वड्डे वड़े ऊचे, जो सतगुर मेल मलाइए, सतगुर जेवड अवर ना कोई, मिल सतगुर पुरख त्याइए। सतगुर सरन परे तिन पाया, मेरे ठाकर लाज रखाइए। एक अपने स्वाय आप बह गुर आगे, ज्यो बगल समाध लगाइए। बगला काग नीच की संगत जाए, करंग बिख मुख लाइए, नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराइए।

पार्वनम चित्याय संगत कर्त संतोख मन पाया संत चरण माता मेरो पौती अनेक बार संतो दंडाओती ए मन संतन कै बलिहारी जाकी ओट गई सुख पाया राखे कृपा धारी रहाओ संत चरण धोई धोई पीवा संत दर्श पीक पीक जीवा संत की मेरे मन आस संत हमारी निर्मल निरास संत हमारे राख्या पड़दा संत प्रसाद मोहे कबू ना करदा संत संग दिया कृपाल संत साई भय दयाली सुरत मत बुद्ध प्रकाश गैर गंभीर अपार गुणतास जी जंत सगले प्रतपाल नानक संत देख निहाल राम कली महला पंजवा तेरे काज ना गिरु राजमाली तेरा काज ना विखे जंजाली इष्ट मीत जानो सब चले हर हर नाम संग तेरे चले राम नाम गुण गाई ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कुछ न कह रहाओ बिन हर सगल निरात काम सोना रूप माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सूखा इहां वहां तेरो उज्जल मुखा कर कर था कि

होगा। आई ना जाए डोले कथनाही, जाकर नाम बसे मन माही। दीन दयाल गोविंद गोपाल गोविंद, गुरमुख जपिए उतरे चिंद। नानक आओ गुरदिया नाम, संतन की टहल संत का काम। राम कली महला पंजवा, बीज मंत्र हर कीर्तन गाओ। आगे मिली नथा बचाओ, गुरपुरे की चरनी लाग। जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला। गुर कृपा ते हिरदे वासी, पौजल पार पर लरहाओ। नाम त्या नाम निधान त्याय मन अटल, ता छूटे माया के पाटल। गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा हुए निर्मल जियो। सोदत सोदत सोद विचार, बिन हर भगत नहीं छुटकार। सो हर भजन साध के संग, मन धन रापै हर के रंग। छोड़ सियानप बहुत चतराई, मान बिन हर ना बे जाई ना काई। दया तारी गोविंद गसाई, हर हर नानक टीक टकाई। राम कली महला पंजवा, संत के संग राम रंग खील। आगे जमको हुई न मील, अहंकार का भया विनाश। दुर्मत हुई सगली नास, राम नाम गुण गाए पंडित। कर्म कांड अहंकार न काजे, कुशल सेती कर जाए पंडित राव। हार का जस निदलिया लाभ, पूर्ण हुए मनोरथ साव। दुख नाटा सुख कर मैं आया, संत प्रसाद कमल बिकसाया। नाम रतन जन पाया दान, दिन को तिस जन हुए सगल दान। संतोख आया मन पूरा पाई, फिर मांगन गाए जाए। हर की कथा संत पवित, जीवा भक्त पाई गत मित। सो परवान जिस हृदय वसाई, नानक ते जन उत्तम पाई। राम कली महला पंजवा, गाँव कर बकरी न आई हाथ। प्रीत करी चाली नि साथ, गौ नानक जो त्याग दी ता वो चरनी आई पई। सुन संतो निर्मल विचार, राम नामन गत निकाई। गुर पूरा भेटत उधार, राव जाब उसको कोई दीवे मान। तब आपस ऊपर रखे गुमान, जब उसको कोई मान पैर हरे। तब वो सेवक सेवा करे,

पंजवा रहन दिन जपि और नाओ आज्ञा दरगह पावे थाओ सदा आनंद होवी सोग काबू न व्यापै होमै रोगा खोजा खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म भय बिस्माद परम गत पावै हर सिमर प्राणी रहाओ गानवन देखो सगल विचारी ना बिना को सके न तारी सगल अपाव ना चाले संग भाव जल तरिये प्रभ के रंग देही तो इना उतरे मैल हों में व्यापे दुमदा फैल हर हर औखद दो जन खाई ताक रोग सगल मिट जाई कर कृपा पार ब्रह्म दयाली मन ते कबू न विसर गोपाली तेरे दास की होगा धूर नानक की प्रभ सरदा पूर राम कली वाला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ बिन दूजा नाही होए ना को तुझ बिन दूजा नाही कोई तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरण तान पर तेरो नाओ एका चरण गही मन मेरे तुद बिन दूजा नाही टाओ रहाओ जाप जाप

गोरपुरे की निर्मलीता भाव भागा निरपो मन बसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म की काटी फाही पाया लाभ सच्चा तन लाही टूट न आवे कुट भंडारी नानक भगत सोहे हर द्वार राम गणी महला पंजवा रतन जवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सूख सह दया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछु टूट न आवे अंध नहीं हर पार वर हाओ कीर्तन मुरख हीरा आनंद गुणी गीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी सुन समाध गुफा तह आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन भगत संग प्रभु गुष्ट करत तै हरख न सोग न जन्म न मरत कर कृपा जस आप दवाया सा संग तिन हार तन पाया दयाल पुर

जाने भेद, अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म भी अंत, अपनी गतमत आप जाने, सुन सुन अवर वकाने, रहाऊ शंकरा नहीं जाने भेद, खोजत हारे देव देविया नहीं जाने मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता खेल, आप बिशूर है आपे मेल, एक परमे एक भक्ति लाई, अपना की आप जनाई, संतन की सुन साची साखी, जो भूले सो पिखे आखी, नहीं लेप तस मन न पाप, नानका प्रभ आपे आप राम करी माला पंजवा, किछु काज न कियो जान, सुरत मत नाही किछ ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म, किछु ना जानो कैसा कर्म, ठाकर प्रीतम प्रभ मेरे, दुज बिन दूजा बिन कोई, भूले चूके प्रभ तेरे रहाउ,

पार ब्रह्म जप है दयाल, ए मन हुआ सादर वाल, हास्त कमल लड़नी लोनाई, नानक साची साच समाई, राम कली मोहल्ला पंजवा, राजा राम की शरणाई, निरपो पय गोविंद गुण गावत, साध संग दुख जाय रहाउ, जाके राम बसे मन माही, सो जन जग दोतर फेकत नाही, सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने, जिसके मस्तक हाथ गुर धरै, सो दास दिसा काही करे, जन्म मरण की चुकी कहानी, पूरे गुर उपर करवाणे, गुर परमेश्वर भेट निहाल, सो दर्शन पाए जिस हुए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करे, साध संग सो भाव जल तरै, अमृत पीवो साध प्यारे, मुख उज्जल साचे दरबारी, नंद करो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरो पार, राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बस संतर भाकै, माटी को जल दै दिस त्यागै, उपर चरण तले आकाश, घट में संत कियो प्रकाश, ऐसा

साधो कौन जुगते अब कीजे, जाते दुर्मत सगल विनासे, राम भक्त मन पीजे रहाऊ, मन माया मैं उचर यो है, बजे ना कुछ गियन, कौन नाम जग जाके सिमरै, पावे पद निर्वाण, भय दयाल कृपाल संत जन आवे बाद बताई, धर्म धर्म मानो देखिए जेह प्रभ कीर्त गाई, राम नाम नर निस्वासर में निमख एक उर तारे, जम को त्रास मिटे नानक ते अपनो जन्म सवार, राम करी महला नौवा प्राणी नारायण सुदले, चैन चैन औद कटे निस्वासर बिरता जात है धीराओ, तरन आपो विखियन जो खोयो बाल पन गियन, बिरद पियो अजूनी समझी कौन कमतुर जाना, मानस जन्म दियो जे ठाकर सो तै क्यों बिसरियो, मुक्त होत नर जाके सिमरै निमख ना ताको गायो।